सज्जन आपे पूर्ण दे एक नी तुत समायक चलै रण चढ़े एक निहाली पै सवन कुपुरण।

जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी आप जी दर ते समो साध संगति हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बांदर प्रवान करनी यात्रावा सफल करनी दरों करों गुरु सिखी जीवन नाम।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਦਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਘਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੌਂਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਫਿਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ
राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आब हो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो से बहें जो से बहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर दया वहें हर दया वहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए गिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब तपहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अबर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहिं सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछोड़या संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर विखे जानहे सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्व रड़े भैले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजों मोह पग नहीं चल ले
हम देखा तहें डूबियले मान एक ना चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मान खुदे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम श्रंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण पर की रखो हो शर्मा जब तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो आदे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आभात दै मुहि बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सावैरन को आय संग्रिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमार तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आप हाथ दें मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निभरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा राख लियो मुहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तोह पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो शत्रण को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आ करख कर तुहो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे थर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद बेद अर अलम ड्रंकार निर्विकार निर्लम आद अनिल अनाद असम ताका मूड़ उचारत पिदा
जाको भेवना पावत बिद्दा ताको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न भव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कि विद सजा प्रथम संसारा एक रूपे अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हव बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपा आ जोगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे आस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरिओ ताके ताप तन कमाए हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शब सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा कल फांसती ताही उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

सहाय दुष्ट दोकते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुवेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को झाड़ के गयो तुहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरि के राव मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा घर दा तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिनक मन वसया वाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा राम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित खर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजी आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पई हो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पे हो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंछे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई
नित्य नित्य रख और थारो तम संसार चरण।

रंग प्रंग ने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर पला तेरे घर आनंद विदाई तुद कर माण माता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिस जत कता नानक दास दास तो दिया गए बिनवता।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु जोड़ जो भाई जोड़ जो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

अक सतनाम श्री बापू ने भी वचन किते चरण चलो। छोटी जी कहानी नहीं, जदों तुसी पढ़दे उसत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, इत्थे आण के निर्मल रसना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पियो पियो अमृत।

जुड़ जो मेरा गुरु कृपा कर दे, मीह पा दे इस कौम दे उते। आखब सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मेरा बापू होर कहिंदा, विखे बन मीन संसार, विखे बन फीका नहीं ते आगरी सखिए। वेखो किन्ना प्यार आ, विखे बन ये संसार। किसी ने मिठा करके वेख्या तो आखो मैनू हाथ खड़ा कर दो, मैनू भी नहीं भाई साहब जी तुम फिका क्यों कहें तो मिठा ही बड़ा है। ये विस गंदलां, ये संसार, ये विस गंदलां धरियां खंड लवाड़ यार दियां गंदलां ने, उत्ते खंड लाई। एक रह दे रह गए, एक राधी गए उजाड़, इत्थे कई उजड़ गए ये गंदलां खांदे खांदे खांदे। फिर इस शब्द नूं पढ़ो प्यार ना, विखे बन फीका। बड़िया नूं तुहानूं बाणी आउंदी, बड़े भागां वाले हो तुसीं लुधियाणे वाले लोग। विखे बन फीका त्याग री सखिए जिंदे जीव आत्मा में। ये संसार दे विखे बन नूं छड़ दे। आ नाम महारस पियो, नाम महारस पियो, नाम पियो, अगे सतगुरां ने होर लिखिया कहते बाणी नूं प्यार नाल पढ़ के देखो, बिन रस चाखे आउंदी, बिन रस चाखे बुडगी सगली। बुडगी मने डुब गई, आ संसार डुब गया जिन्हां ने यह रस नहीं पीता। पता लग गया, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी ना होवत जियो, सुखी ना होवत। किसी का जीव जिंद किसी की सुखी नहीं हुई जिन्हां ने नहीं जपया वाहिगुरु वाहिगुरु वाह। तगड़े हो, गुरु डायरेक्शना दे रहा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आखो सतनाम श्री। बाणी तो सारी मिठी, आश उत्ते बहुत प्यार दा है। विखे बन आ सारा संसार, जिन्हों तुसी मिठा करके मानते हो एक दिन पता लगे। हाँ, एक दिन दो दिन किसी ना वरत के कहिंदे नहीं यार एवें ही निकलिया, इत्थे वरत के वेखो, इत्थे वरत के वेखो। कदी कहोगे एवें ही निकलिया, पुत बार तू जेकर गए प्यारड़े। आखो वाहिगुरु, जेकर तुद ना छोड़ा मूल, तुद ना छोड़ा, फिर मैं मूलों ही तेरी कदी बाह ना छड़ा। मैं हाथ जोड़दा संसार दे लोकां नूं, तुहानूं कल्यां नूं नहीं। आखो वाहिगुरु। आ हुण मैं वीर अपने नूं बड़े गुरमुख प्यारे ने जीवन वाले सिख, उन्हां नूं कह के हटिया भी अमरीका भी आ रही है कथा सुनो। विखे बन, मेरा दिल करता है तो तुसीं फोकस करो होर। विखे बन, बन मैने बनवारिया, बनवारिया बन जंगल, आ दुनिया एक जंगल है बड़ा भयानक। इस जंगल च बड़े आदमखोर लोग रेंदे नहीं,
ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਮਖੋਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਦਮਖੋਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਦਮਖੋਰ। ਪੰਥ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਖਾ ਜਾਏ? ਪੰਥ ਵਸੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਜਣਾ, ਮਨ ਚਾਹੋ ਘਨੇਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਜਾਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਆਦਮਖੋਰ। ਪੱਗਾਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੱਗਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਆਦਮਖੋਰ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮਖੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਖਾ ਗਏ। ਦੱਸੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਖਾ ਗਿਆ, ਆਦਮਖੋਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਪੈਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ

ना बड़े ढेले पै वो तू भी गुरप्रीत कोई बेड़ा हुंदा सी इत्थों दा जथेदार साधु सिंह भवरा हुंदा सी अख वाहिगुरु अदालत विच जांदा ते जज खलो जांदा है मैं आप वेख्या अख वाहिगुरु मैनू नहीं सी पता जथेदार साहब की हुंदे मैं छोटा जिहा किसे नाल अदालत विच गया अख वाहिगुरु उन्होंने सोहनी तंबी पाई सोहना कमीज सोहना उत्तों के अचकन पाई एडी सोहनी पग कालियां वाली बद्धी किन्होंने सारे बोलो साधु सिंह भौरा जी ने एक बार फिर बोलो साधु सिंह वो भी जथेदार सिख दी अदालत दे विच अंदर बड़े तो मैनू अंदरों के वकील ने आण के दसिया भी अज कमाल हो गई आ जथेदार साहब अदालत दे अंदर बड़े ने तो जज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कदी साड़ी इस पदवी का इन्ना सत्कार से अज दी घड़ी अख वाहिगुरु अज दी घड़ी साड़ी कौम दे विच पंज जथेदार है नहीं कोई समा सी अख वाहिगुरु दिल्ली दे विच अमृत संचार कराउणा ही बंगला साहब अख वाहिगुरु पंज सिंह सद्दे सी उदों पंजां तख्तां दे ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आखिया जी तुसीं बाटा तैयार करना पंजां सिंघां तख्तां दिया ने पंजां जथेदारां ने बाटा तैयार करना तुसीं अपनी हत्थीं पंज हजार प्राणी ने एक दिन अमृत छकिया सी इन्नी रीझ सी कौम दे मन विच भी जथेदार दे हत्थों अमृत छकण दे आ अज तुसीं इन्हां नूं डाह के वेख लो चलो मैं नहीं किसी दी निंदा करदा गुरु कृपा करे नाम महारस पियो नाम महारस पियो नाम बिखे मन फीका त्याग रि सखिए

अजे तो मुंह मिठा ही नहीं होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। राती रोहतक तो एक पिता बाई वीर मेरा हिंदू वीर सी इत्थे आया, कहना मैं सहज पाठ आराम करना। आखो वाहिगुरु, मैं क्या कर लो? कहिंदे तुसी गाइड करो। मैं गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी नूं मिल लो। कहिंदे नहीं तुसी गाइड करो। मैं क्या पोथियां लै जाओ? कहिंदे पोथियां घर है गईआं। इहना क्यों भी सिखां दे घर ही आ पोथी? परमेश्वर का थां मेरा परमेश्वर सरगुण स्वरूप दे विच किसी हिंदू दे घर विच भी बैठा है। आखो वाहिगुरु। ते ओह कहिंदा मेरा मन नहीं जुड़िया। मैं कोई नहीं जुड़ूगा। दो मिनट लई उत्थे खलोते संगत बहुती सी, धक्का मुक्की हो रही। मैं कदी कीड़ियां वेखियां? कीड़ी कीड़ी की गल हुई पुत, की गल हो गई? कीड़ी वेखी? कीड़ी ऐ करके वेंदी है भी मिठे की वासना कित्थों आउंदी? आखो वाहिगुरु। कौन पता लगता भी कोठे ते आ की हुण लत्तां ते बेचारी दियां मेरे अर्गियां मैनू तो इस तरह फड़ के चढ़ाउंदा इस तरह दी बेचारी निक्के निक्के दे लत्तां सी। पर तेरे वड्डे भाग नहीं, मैं तेरे तो वारे वारे जावां। आखो वाहिगुरु। तू हिम्मत कीती कोठे ते चढ़न दी, तैनू पता लग गया उत्थे मिठा है। तू हिम्मत कीती कोठे नूं मूंह कर लिया, हवा दा झोंका आया उन्हें तैनू डेग दिता। आखो वाहिगुरु। कीड़ी तां चढ़दी चढ़दी नूं हवा दा झोंका आया तो उन्हें तैनू नहीं, ये तो कोई गल ना हुई, फिर उन्हें तैनू डेग दिता। तू फिर हिम्मत कीती फिर डेगता, फिर हिम्मत कीती फिर डेगता। एक दिन ऐसा आया हवा बंद हो गई। आखो वाहिगुरु। करन वाले ने हवा बंद करती, चढ़ गई चढ़ गई। जाके चीनी खा ली। हिम्मत ना हारो, नानक हर रस मीठा है। बोलो अवर साध सगले चख देखे। बोलो मतलब की बनूंगा जी? होर सारे स्वाद चख के वेखे। मन बोलो हर रस सब ते मीठा है। जिहड़ा मेरे सतगुरु दे नाम दा रस आ ना, जिन्हां नूं आया ना, जिन्हां नूं आया उबलदी देग च बह गया, उबलदी देग च बह गया। ओह कहिंदे तैन तत्ती नहीं लग रही? कहिंदे ना ना ना ना, तत्ती काली जे कल ताती छाडा हर नाउ। जे कलयुग दी अग ने मैनू नहीं तत्या आउण दिता, पानी दी अग मैनू कुछ नहीं कहिंदी। उबलदी देग च बह गया, मगर जपी गया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

पिताजी वाला ये आखो धन गुरु गोविंद सिंह साहब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन मेरी इच्छा नहीं पूरी की अली, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन रवालसर दी धरती अख वैगुरु केड़ी कोई गया ताड़े चो यार तू बहुता सोहना सिख मैनू मगर जो मैं इधर उधर वेना है ना मेरा लक टुटदा वो बापू जी दे अगे बैठे तुहानू पता मैनू तुहानू कहण दिया मैं इधर उधर क्यों वेंदे इत्थे वेखो ना सामने गुरु गोबिंद सिंह साहब बैठे हो वेखो वेखूगा इधर उधर आखो वाहेगुरु रवालसर दी धरती रवालसर दी गए हो कदी नहीं आली चलो कोई नहीं जायो जरूर जायो दसवें पातशाह दा स्थान आ इत्थे सप्पां दी धरती सी सप्पां दी रवाल ऋषि रहिंदा सी इत्थे आखो वाहेगुरु कौन रवाल ऋषि सप्पां दा मुखी इन्हें बेनती की कि गरीब नमाज पातशाह के चरणों में भी मैं जग करदा जग आखो वाहगुरु मैं राक्षस आते ने तो जग दे हड सुट देंदे पता लगा सारे लगा राक्षस आते ने तो हड सुट देंदे हड तो साडा जग सारा ही अपवित्र हो जाता गरीब नवाज बड़े तरले पाए इन्हों राक्षसां नूं ते तुसीं गरीब नवाज पातशाह दीन दयाल जी हर जुग जुग भगता पाया हरनाक्ष दुष्ट मारिया प्रहलाद हरनाक्ष दुष्ट वर्गे राक्षस तुसीं मारे ने गरीब नवाज साडी बेनती है कितें रवालसर आओ आखो वाहिगुरु ते सहिब आलम पातशाह पंज सिख लै के रवालसर गए साहब उन्हें नीले नू नहीं लैके गए आखो वाहेगुरु नीला मींद बगे ते गए नाल पंज सिख जाके बह गया शहनशाह पहाड़ी राजे सारे कट्ठे होए सी सनाह कले सी महाराज ने अज मैं उत्थे पहाड़ा च आना ते तुसी भी आयो कुछ गुरमता करना है आखो वाहेगुरु पहाड़ी राजे सी ना जिहड़े उन्हां नू आख्या कोई उच्ची बोलो मैं ताडे नाल कोई गुरमता करना पहाड़ी राजे भी आए राक्षसां नूं समझाता भी अज तो तुसीं इहनां दे जग दे विच कोई खैबण नहीं पाउणा हुण पहाड़ी राजे बह गए चेता करिओ हुण जो मैं कहण लगा सारे ही राजे थले बैठे तीर कमान मोढ़िआं ते कृपाना गलां च ने कलगियां उन्हां भी लाईआं इस मेरे मालिक नूं पलंग ते पाया राजन के राजा

0: जथा आ गया।
1: मेरे साहब ने पहाड़ी राजा ने समझाया, मेरा कहने का मतलब यह नहीं समझा, मेरे कहने का मतलब है मेरा साहब राजा का छैन छावां का जोगिया का फकीर का। जदों कित ये लिखे ना किसी ने आखो वाहगुरु भी वह मेरा साहब दीन दुनिया का मालिक गरीब भी आ ते शहनशाह भी आ। आखो वाहगुरु किसी ने आख्या ये किस तरह हो सकता जड़ा गरीब आ वह गरीब आ जड़ा शहनशाह हो। नंद लाल ने आख्या आओ मैं तुहानू अपने महबूब विच विखावां फकीरी भी ते शहनशाही भी। हौली बोलदे हो लक टुट जांदा जिन्हों इन्ने सिख बैठे होण ते गल हुंदी होवे गुरु गोबिंद सिंह साहब दी ते तुहाडा खून ना गर्म होवे। आखो वाहगुरु उस गुरु दे वचन करन लगा। दूसरा सोहिया है कल किहड़ा पढ़िया ही दीनन की व्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नरातव सर्व समय सब को प्रतपारे। अज मेरा बाबा कहिंदा दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे। बड़े बड़े जिहड़े दुखी है ना लोगों नूं दुख देने वाले उन्हां दा दाह कर दिंदा है नहीं पता लगा दाह मैंने सड़ दिंदा। दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे। बड़े बड़े दलां दे दल दुश्मन दे आ जाण ते सामने खलोता हो मेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब घोड़े ते चढ़ के गां तो नहीं कोई आया अदीना भी गाया सी। आखो वाहगुरु उन्हें आण के आखी 10,000 रुपया जुर्माना दे दो ते मैं सीधा होके पुत बै मैं चलिया मैं जिम कश्मीर नूं ते मैं 10,000 रुपया लैके तुहाडे डेरे नूं छड़ दांगे नहीं तो मैं डेरा तुहाडा लुट लैणा ते 10,000 रुपया ते तुहाडे सिख भी मार देने। उदों मेरे सतगुरु दे कोल 1400 सिख सी अजे 1400 नवां नवां डेरा बणिया सी आनंदपुर साहब दा। आखो वाहगुरु चिट्ठी दे उत्ते लिखिया ते कंधरां ला के मेरी सरकार चिट्ठी पढ़ रही। माता ने आख्या चिट्ठी कित्थों आई। माता जी ये चिट्ठी अदीना बेग बादशाह जरनैल आ ते औरंगजेब दा भेजिया कश्मीर नूं चलिया। उन्हूं किसी ने दसता इत्थे एक डेरा है उन्हां दे कोल बड़ी दौलत आ ते बड़े सिपाही ने ते नाले पहाड़ी राजे शिकायत कीती। आखो वाहगुरु किड्डी मां हो जिहड़ा लम्मा हो आप उड्डी लम्मी। एक बार वेखो ना अखां मीट के माता गुजर कौर नूं अखां मीट के इन्नी जीवन की उच्ची ते सुची करदार दी मालक माता ने आख्या पुत जे उन्हां 10,000 रुपया मंगिया ते दे के परे मारो आपां नूं पैसे दा घाटा है। धन गुरु गोबिंद साहब कहन लगे माता गल ते तुहाडी ठीक है तुसीं सुख मंगदे हो परिवार दी पर मैं तो अकाल दा पुजारी हाँ मैं तो पैसे किसी नूं देने नहीं। आखो वाहगुरु उन्हें आख्या फिर नुकसान होगा फौजां आ गईं। अदीना बेग ने चिट्ठी लिखी भी मैं चढ़ के आनंदपुर साहब ते आ गया। आखो वाहगुरु तो मैं एक मिनट दे विच सारा आनंदपुर साहब का बिल्कुल दल मिल देना तुहानूं सारिआं नूं मार देना। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या इस तरह नहीं दून दा इलाका है उत्थे। आखो वाहगुरु इलाका दून दा है दून दा दून दो जिथे पहाड़ कट्ठे होंदे विचकारली जिहड़ी जगह होंदी उहनूं कहिंदे दून। आ जा उत्थे मैं भी आउण लगा ते साहबे कमाल पातशाह दीन दुनिया के मालक जी उदन काले शौल दी बुक्कल मार के ते चिट्टा दमाला बन के चिट्टी कलगी ला के साहब बग्गे घोड़े ते चढ़ के गया। अगों अदीना बेग आखो वाहगुरु इत्थे चरणजीत सिंह आया कित्थे बह गया। आखो वाहगुरु सामने गया मेरा साहब अदीना बेग ने आवाज मारी, बच्चा है अली भी 21 साल का है, जंग एडे वड्डिया एडे वड्डे जरनैला फौजा ने जंगा कीतियां नहीं, पहलू वार कर ला। तो साहब ने आख्या मैं तो दिल्लियों चढ़ के आया नहीं, दिल्लियों चढ़ के उच्ची बोलिया करो, मैनू आनंद आ जाए हुण दिल्लियों चढ़ के ते मैनू तो कोई शौक नहीं सी जंग करन दा, आ जा। अदीना बेग ने तीर मारिया, सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने तां करता, दूसरा तीर तेगा बरछा, महाराज का घोड़ा नीवा हो गया, बरछा विकना गया, डर के भजन लगा ही, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़ा भजा के अगे करके ने कहते नहीं पुत्रा हुण तो नहीं, वार ना कर दो तो फिर मैं तेनू कुछ नहीं सी कहना, तू गुरु नानक साहब के घर वार किया हूँ मैं तेन भजन नहीं हो देना। आख वाहगुरु अगे होके घोड़ा गया, आखे आखे थले उतर, थले उतरिया तीर कमान फड़िया ही अद्धे विच, मेरे साहब का घोड़ा चार सवेरे घूमता रहा, चार सवेरे घूमता रहा, अपने वालों सारा लोहे का मड़िया सी अपने आप नू, कौन सारे बोलो अदीना, दीना नहीं अदीना, मड़िया सी सारा। साहब ने चार सवेरे घोड़ा घुमाया, आ आ आ जड़ी आ नज़र आ गई मेरी सरकार नू। साहब घोड़े तो थले उते गोड़ा थले रखिया, चुकया तीर कमान, ऐस थां ते पुड़ी च तीर मारिया, पुरपुड़ी दे विच मेरे सतगुरु ने सिर इस तरह खिलर गया जो कोई नारियल तोड़िया हुंदा है। दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे। अगे गरीब नवाज पातशाह का अगला क्रम जड़ा किधर गया, हो इतों ही होना, अच्छा खंड अखंड प्रचंड प्रहारण, जड़ा बड़े बड़े अखंड प्रचंड जड़े आए प्रहार करन, उन्हां नूं एक मिनट दे विच सोध देण वाला, ते अपनी मूरत कि तरह की है, पूर्ण प्रेम की प्रीत सुमारे, आपने कित मूँह वेखीए तो मूँह देते नफरत नहीं हैगी। आखो वाहगुरु रोज ही राज बलोकत, रोज ही राज बलोकत राजक, सारे जिन्हें जीव जातु ने सारियां नूं इह वेखदा है, ते रोख रूहान की रोजी ना टारे। इस संसार च कई लोग ने ध्यान ना सुनियो, इस ध्यान च कई लोग ने संसार दे विच रुखे ने जड़े, लख सदा करो एक बार मैनू कहो इस तरह करके किहड़े ने, जड़े बोलदे भी रुखे ने। आंदा मेरा साहब कहिंदा हे अकाल पुरख तू एडा दयालू है, रुखे जड़े बोलण वाले आ तू उन्हां दी भी रोजी नहीं टालदा, उन्हां नूं भी रोजी देना। रोख रूहान की पार ना पाए सके पदमा पत, पदमा पत उस वाहिगुरु परमेश्वर दा जिहड़ा माया दा पति आ, वह भी उदा पार नहीं पा सकता। बेद कतेब अभेद उचारे, बेद कतेब सारे की दसते ने, वह अभेद है, बेद ते कतेब की दसते ने, अभेद कतेब अभेद उचारे, बेद कतेब की कहते भी उदा भेद क्यों, वह अभेद है उदा कोई, उस मालिक का अमृत छकना हूं आप, कल अमृत का बाटा तैयार होना है, अपने तो बाद रागी साहब भजन ही जाना सारे ने, गुरु के कीर्तनी दरबार साहब तो आए हाँ, आप रबी बाणी का कीर्तन सुनना है, चढ़दी कला विच रहना है। आने वाले दिन कल तो नहीं साड़ी कथा हैगी, अगे तो सारे 10 तरीक तक लगातार हैगी। गरीब नवाज सारे का तुहाडा भला करे, मैं अरदास करदा लुधियाने का, एक एक बच्चा एक एक बच्ची एक एक बजुर्ग एक एक नौजवान मेरे साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ लगे, सिक्खी दे बाणे विच सिक्खी सरूप विच पक्का होवे। वाहिगुरु जी का खालसा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ।

प्रति तान पेर कहे सोए सो कहो टल गोर सेविया एहन सु सहज सुबाई दर्शन पर से गुरु का

गौरपुर वेखालिया गौर सेवा पाइय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल अजूनी सैवं गुर प्रसाद सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का होय विचारो तित कर गावो सोहेला शिव रिहो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला हो वारी जित सोहेले सदा सुख होय रहाओ। नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते गवन शुमार। संबत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन सीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल। कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर कवेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वढाई तोए रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पहरा तिती वारी माहवा सूरज को रुत अनेक नान करते के केते वेश। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक वने तारिका मंडल जन कमोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल वन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त नन नायक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध विन सहस्तव गंधे विचलत मोही। साव मह ज्योत ज्योत है सोए तिजदै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोवित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारें को होए जाति तेरे नहीं वास। राग गोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वह भलिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरलि मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडोत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर साधना जानिया तिन तरह मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चल हैं चुभ दुख पाव हैं जम काल सह से डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बो सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हराख राख वड्डा हे। जन नानक नाम दा टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहा खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला। औद कटैद निसरै नारे मन गुर मिल काज सुवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पियावै हे रस काथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई विहाजो हर गुरते मन है वसीरा। निज कर महल पाव

सुख मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड़ सो पर सदा सब बिद रत्नागर संत मराल कर है कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग तुरत दूर कर बेको

अनस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पात शाह सिर शाहद शाहो जिस पा

0: लाख सूरत न संग्राम रण में छुटे प्राण
1: लाख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।